शर को है राई मेरी छाती भीतर झुक झुक झुक झुक पहाड़ चढ़ता ले कलाचा चढ़ा जल्दी पहाड़ चढ़ता ले कलाचा चढ़ा जल्दी।